0: तुमको लास तुमको फाफी
1: नि वलोतेने दे नि नि सोरा नामनी फनासाननाय वतिया रुसी जाय फिरनेना एटेरितनाय फा हानापेनाय बेबे कुकु अमजो फतोना अमला सार्टने मदगास्कार जाव पोलिटिका सिनि इकोनोमिक जाय दे फाले fatongavana eto zao dia fanehoana amin'ny firenena rosiana ny fahavononanay.